मुन्ना को आजा का मम बावा ने रात ही होगो आजा का यहाँ पर से मुख में लम उठे नहीं ये इन्हीं लंबन टा अन्ना मगवा नहीं आओ इगोर अपेली सोशा का मिनट मिलो को मेल रिम नोट मोहा 2:21 मिनट्स मपका 2:30 मसी पुआ हम रेडियो मो ओला ती बंदा हिसो जे मोमेंट्स Anon te pija y jodia la hoy. Huera gato soy. Con cogi para que ahora shit.